0: एहारा निहार, एहारा निहार।
1: नोदी है कि मेगाहर्ट्ज़ दिवे ही एफएम, अब दोस एम मेगाहर्ट्ज़।

मैं कुछ भी कर लूं, तुम कभी मुझसे मोहब्बत नहीं करना चाहती, और तुम कुछ भी कर लो, मैं कभी तुमसे नफरत नहीं कर सकता।

नहीं मरना गवारा प्यार में, तुमसे ये कहना है, तुम्हें भी जिंदा रहना है, मुझे भी जिंदा रहना है।

0: نوديها 2 ميجا هرتز تبعي اف ام.
1: ए मावे सुट्टा लाफिंग
2: आहार में सुट्टा लाफिंग
3: ए लिस्ट को मावे सीमा ना ला
4: अमिल ला फैसा आंदा गें अमिल ला हाशिंगड़ा गेल्लुं दिरुमकी की हां मोय गमे ए में मावे सुट्टा लाफिंग
5: दुम फाई आहार में इंदे हाथुरे दुम फतु के इस्तेमाल कुरुम के साबुन देमा वासी ही मसल ता होगा आहार को हैम मिलियन वुरे किना मिहु मारवा कमा ताफास हिसाब तकुन दाका फस नुजेहि अवह दुमफतु गे इस्तियो माल कुरुं हुट्टा लमा हिंगा
0: नुवदिह 1 मेगाहर्ट्ज़ इवही एफएम

0: coach Naja and Zook and Naja. But Zook and Naja is also a BJJ coach. So him thank you. Coaching itturun den training partners to me technique rangalang he deni training partners give us vara e barulun di begin to then training partners is asuarang helpful so huria training partners aga vis thank you
1: vara boda shukriya fatu then ummida ki hama fatu na hama mustaqbal ga hama kamyab libun hama rajya ti go tan hamari tinang ho da de vele kamyab hama mi hak fatu vun ummida ki
0: en vara boda thank you samaya vis en radio ya fursat algada dini ma vara ufa vet asumi kala program ko fursat dini wa then koda ko nervous fas mi una nam ko interview chi di en no lendo
1: ya eh hama vara boda shukriya fatu तो इंगे हम जोग बैवर विल दिनी थे हम वर पोटा शुक्रिया
0: थैंक यू
1: मिगडी का कुरिया मिगे इंडिया स्पोर्ट्स बीट मी शो नि माला फ मी वाकी वेलानी एंड नो होम द हुवे स्कूल उन तेरे काय कुगा बदल कोलम तो उम्मीद गा एहन तेर नंग फावर बाज वेर दुहा खंगे दे आदि दिवे एफएम के कुरिया हुरी प्रोग्राम तक दवते बस ताम देखू